0: को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है।
1: इश्यू बिटवीन द पीपल, आई मीन द बिलीवर्स ऑफ दिस कंट्री एंड बीजेपी, बीजेपी वर्सेस बिलीवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेड रामा ए पॉलिटिकल इश्यू एंड नाउ ए ह्यूज स्कैम इन विच at least more than 10,000 crores of rupees are involved.
2: Ayodhya Trust has been nominated by the Union Government. Now the SIT is inquiring, Chief Minister and so-called SIT. They cannot inquire this thing in a truthful manner. It is very clear that big fishes are out. And after theft happened, you are justifying, you are criticizing those who are questioned the temple theft. That means you are justifying the people who are done this theft.
3: श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं, उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है। लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई होती है।
4: On that note, we're going to a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
6: Now watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों से सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा।

0: Welcome back. Well, let's now get you some shocking CCTV footage of an accident that took place in Uttar Pradesh's Kaushambi district when an LPG tanker crashed into a toll plaza. This took place early morning. It was on the 26th of June. In fact, when this accident took place and the CCTV footage has only emerged out, just take a look at that massive fire and explosion that has taken place. And five people were killed in this accident. The flames were reportedly so intense, they were visible from 2 kilometers away. Now, this was at 6:30 in the morning when an LPG tanker tried to overtake another tanker right there at the toll plaza and then crashed into the toll plaza, bursting into flames and then this massive fire engulfing the entire area. Let's go across to Ajay Dubey now for more. And Ajay, this footage has only now become available and it's absolutely shocking how massive the fire was, the explosion, and five people died in this accident.
1: निश्चित ही देखिए तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है कि जब गाड़ी टक्कर में कुछ होता है, दुर्घटना होती है, उसके बाद बड़ी तेज रफ्तार में जो हवा है वो वहां पे प्रवाहित जो गैस है उसके अंदर से फैलती हुई दिखाई देती है और कुछ देर बाद टोल के किसी एक हिस्से से स्पार्क उठता है और सब कुछ जलता और वहां पर दिखाई दे रहा है, धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जोरदार आग उठती है। और अब तक इस मामले में जो मालूम चल रहा है सोर्सेस की तरफ से जानकारी, 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इतने खतरनाक ये तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, जिससे पता चल रहा है कि क्या ये दुर्घटना थी और इस दुर्घटना का इम्पैक्ट क्या था। ये अब तक वहां पर जो टोल है वो पूरा जला हुआ है। स्पॉट पे कई लोग और हैं जो झुलस गए थे और अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है।
0: जी, एंड अजय, कहा जा रहा है दैट द टैंकर वाज ट्राइंग टू ओवरटेक द अदर टैंकर एट द टोल प्लाजा एंड दैट इज व्हेन यू नो मिसकैलकुलेटेड एंड क्रैश्ड इनटू द टोल प्लाजा।
1: बिल्कुल, देखिए कारणों को लेकर तो जांच अभी भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि क्या कुछ कारण थे, पर तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ उन दो व्हीकल्स के बीच में कुछ तो कोई कम्युनिकेशन, कोई जो टोल के लेन्स हैं उनमें कुछ टकराव होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूसरी गाड़ी है पहले ही वो अटकी हुई, कुछ ब्रेक सी लगती हुई अटकती सी दिखाई देती है, जिसके बाद बड़ी तेज गति से वहां पर जो गैस है उसका रिसाव होता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर उसके थोड़ी देर बाद जो एक धुएं के अंधेरे के बीच में आग की ज्वाला उठती है और सब कुछ जल जाता है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन इस बारे में की जा रही है कि इसके पीछे क्या कारण थे।
0: All right, thanks so much, Ajay, for joining us with those details. And this is an accident that took place on the 26th. The footage only available now. And just take a look at that massive ball of flames that erupted after that LPG tanker crashed into the toll plaza. All right, the latest now in the Ketan Agarwal murder case, which has entered, the probe has now entered a crucial phase. The Pune police are moving to conduct a polygraph test on the two prime accused, that's Siya Goyal and Chetan Chaudhary. The main accused, Siya Goyal, agreed to this polygraph test. Investigators will also cross-check the accused's statements based on the test findings. Meanwhile, a new twist has emerged with the police probing the alleged role of one of Chetan Chaudhary's classmates who is suspected to perhaps he knew about the murder plot in advance. On the other hand, investigators also believe that Siya and Chetan had practiced how they would push Ketan from the hill before carrying out the crime. And more breaking news coming in this case. Siya Goyal is going to be produced in court very shortly. The police are going to be producing

0: the RSS has called the entire incident unfortunate of the theft involving the amount collected in the donation boxes of Sri Ram Lalla temple in Ayodhya. It was the recommendation of the Janambhoomi Teerth Kshetra, as being stated by the RSS, that the Uttar Pradesh government constituted the SIT and is acting on its recommendations and also has initiated a legal proceedings as well. It is the RSS who had stated that it is essential to ensure that anyone who is found guilty during the investigation receives severe punishment. The RSS has also admitted that because of the entire donation theft, it is natural that the entire Hindu society, including the RSS, is to expect that the trust to treat this as highly condemnable incident at, as an extraordinary matter and should take it very seriously, effective steps to rectify all those shortcomings in the management and operations as well. The RSS has also later on went on to say that it has called upon the entire Hindu society to display necessary patience and restraint during the difficult moment. And
1: sorry to interrupt you there. We're joined on the phone line by Samajwadi Party leader IP Singh, joining us on the phone. IP Singh, your reaction to the RSS's first statement that has come on this whole issue of the donation theft, also talking about how this is being used as an opportunity and one must be wary of people using as some sort of conspiracy and people fishing in these troubled waters.
2: देखिए राम भक्तों के चंदा चोरी का ये मामला है और ये चंदा चोरी नहीं डकैती हुई है. आरएसएस अपने को दावा करता कि हिंदुओं का धर्म रक्षक है. आरएसएस ने ही चंपत राय बंसल को राम मंदिर पर तैनात किया, उन्हें सारी जिम्मेदारी सौंपी. 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की, 8 करोड़ की जमीन 56 करोड़ की, और ये लगातार ये मामले जब हम सब वहां उठाते रहे कि इसकी जांच होनी चाहिए, न इस बात का संज्ञान जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, भाई आपकी इंटेलिजेंस क्या करती रही, आपको कोई जानकारी नहीं. हर सप्ताह आप राम मंदिर के दर्शन करने जाते रहे और वहां चोरी डकैती होती रही. वहां के लेखा अधिकारी ने गंभीर आरोप 2023 में लगाया, चंपत राय बंसल से शिकायत करी, बल्कि उनके खिलाफ ही उन्हें हटा दिया गया. इंजीनियर वर्मा ने कहा कि वहां 40% से ज्यादा कमीशन, क्योंकि निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी जो मुख्यमंत्री के अंदर है, वहां 40% मंदिर निर्माण में 40% कमीशन लिया गया. और आरएसएस सोता रहा. आरएसएस लोग जो जानकारी आ रही है, पैसा नागपुर जा रहा था, ये हजारों करोड़ की लूट है. आरएसएस ने सुनियोजित रूप से चंपत राय बंसल को और वहां गोपाल राव जैसे सीनियर जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं उनको तैनात किया. अनिल मिश्रा सीनियर पदाधिकारी रहे. इन लोगों का जो मनी ट्रेल है बैंकों का, इनके जो इन्वेस्टमेंट है, रॉ को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ईडी सीबीआई में जो टॉप क्लास के फोरेंसिक अधिकारी तैनात होते हैं, लॉयर हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए सीबीआई.
1: All right, we'll leave it there. Thank you so much for joining us on NDTV. Their reaction to the RSS's first statement on the Ayodhya donation theft case. Well, with that, we'll slip into a short break. More news coming up on the other side. Do stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों, थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
10: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.

0: saying, you are criticizing those who are questioning the temple theft. That means you are justifying the people who are done this theft.
1: श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है, लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई होती है।
2: जिस भाजपा ने अयोध्या में भ्रष्टाचार किया है, जिस भाजपा ने उज्जैन में भ्रष्टाचार किया है, कैसे बैठ सकते हैं उनके साथ आप? क्या सवाल उनसे पूछने में हिम्मत है आपकी? एसआईटी नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड न्यूट्रल फेयर कमेटी चाहिए जो हर दिन इस देश को रिपोर्ट करे, हर दिन इस देश के हिंदुओं को रिपोर्ट करे, इस देश के श्रद्धालुओं को रिपोर्ट करे कि रामलला के मंदिर में कैसे भाजपा ने भ्रष्टाचार किया।
3: All right, let's shift focus now to news from Punjab and political developments there. And it's Congress versus Congress again. Lot of insecurity is coming to the fore with just months to go for the Punjab elections, which will be early next year. So let's take you through those developments. The rejig within the Punjab unit of the Congress ahead of the elections has several Congress netas upset and sulking. Former Chief Minister Charanjit Singh Channi also held a separate show of strength. It was a meeting that he held today with all his supporters. Channi was recently appointed chairperson of the campaign committee by the party high command, but he was eyeing the state chief's post. Today, MP Sukhjinder Randhawa's visit to the Kartavya Bhavan in Delhi also triggered a big buzz. He met with Amit Shah in the capital, but later, speaking to NDTV, denied there was anything more to that meeting. And then just yesterday, Member of Parliament Manish Tiwari too had put up a cryptic post on X saying that he had served the Congress party all his life, and he also spoke about insecurities and having an antidote for insecurity, suggesting that he was upset over being sidelined in the recent party restructuring.
4: Sukhjinder Singh Randhawa is with me. Sir, you met with Gृह Mantri today. What was the issue? What was the issue? What was the issue? What was the issue?
5: In Punjab, the Lachar, especially in Gurdaspur, and mainly Dera Baba Nanak constituency, Gurdaspur, Batala, and Amritsar Pura district, and Pathankot, फिरोजपुर, वो जैसे लोग टेररिस्ट गैंगस्टर जो हैं उनके बारे में मैं 2 महीने पहले एक प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा था। उन्होंने होम मिनिस्टर का कॉपी होम मिनिस्टर साहब को की थी और उन्होंने उसी के ऊपर बुलाया और पॉइंट बाय पॉइंट उनके साथ डिस्कशन की गई। ये मेरे को ट्यूसडे को मैं उनकी कॉल आई थी कि आप आ जाओ, कल मेरी हाउस कमेटी की मीटिंग थी। मैंने कहा जी मैंने हाउस कमेटी की मीटिंग में आना है, उसके बाद आप कर लेना। तो आज उन्होंने फिर 11:30 बजे
4: सर पंजाब में चुनाव भी है, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई है, आपने मेरे को सर आपको लगता है पंजाब में कांग्रेस जीतेगी, आप उस पर तो दावा कर सकते हैं? ठीक है, देखिए रंधावा साहब है, इन्होंने आज गृह मंत्री से मुलाकात की, लेकिन उनका कहना है कि बॉर्डर डिस्प्यूट मामले को लेकर उनकी जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात थी।
6: पब्लिक तो पंजाब की चाहती है कि सीएम फेस बनाया जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगे पहले मौका कम मिला था, उनको पूरा टाइम दिया जाए। तो पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, जो भी है इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड द पंजाब।
7: तो आज यहाँ कहा जा रहा है 40 के करीब जो हल्का इंचार्ज यहाँ पे पहुँचेंगे, ज़्यादातर मालवे के होंगे, तो क्या मतलब क्या क्या डिस्कस क्या किया जाएगा ये थोड़ा बताइए।
6: देखो अभी इकट्ठे होंगे तो पता चलेगा कि
7: लेकिन ये क्लियर है कि
6: हम और आप कर रहे हैं ना, कभी ये नहीं लोग मजूस हैं, लोगों को एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, एंड दे हैव गिवन अ डिसीजन व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पीपल।
7: ही विल बी अ फेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर।
6: यस, लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
8: मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता।
7: चरणजीत सिंह चन्नी को कह रहे हैं लोग यहाँ पे, कह रहे हैं कि सीएम फेस होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए,
8: लोग उनको चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो लोगों की कदर करनी चाहिए ना।
7: बाबा क्या लगता है कि प्रेसिडेंट बनाना चाहिए क्या सीएम फेस?
8: ये तो चन्नी साहब जैसे सेटिस्फाई होंगे।
3: All right, so the various statements being made by Congress leaders in Punjab, and once again this Congress infighting coming to the fore there. Let's go across to Gurpreet for more. And Gurpreet, so today this meeting was held by Channi with his supporters. What are you hearing? What is the Congress going to

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
9: रियली
8: फैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
10: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
11: You're watching NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challenges in the fray, the TMC also has done a bit of

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों से सरसों।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे लाइफ में स्क्रैचेस

0: तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
1: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: We are over, Jimmy.
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
10: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
9: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा और प्योर मसाला।
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together.

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
6: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
5: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा और प्योर मसाला।
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों
5: देश का टायर, जेके टायर।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
8: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
7: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर प्योर मसाला।
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़।

मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरे गांव का नाम है दुन्ने के। ये पंजाब में एक ज़िला है मोगा, वहाँ पे छोटा सा गांव है दुन्ने के। तो मैंने अपनी स्कूलिंग की है यहीं से, अपने गांव से। टेंथ तक पढ़ाई की है यहाँ पे, फिर मैंने ट्वेल्थ की है लाइक मोगा में जा के लाइक कहीं, उसके बाद कॉलेज, मेरा कॉलेज चल रहा है। मम्मी है, पापा है, मेरे दो भाई है छोटे, एक बहन है बड़ी, तो एक मैं हूँ। पापा मेरे लेबर करते हैं, मम्मा भी करते हैं किसी के घर में काम। मैं इसी गली में बड़ी हुई हूँ, यहीं पे खेलती थी मैं पूरा टाइम डायरी दे वरिक्या उत्ते।

0: बचपन से मतलब इसको शौक ही था गाने का जी। चौथी साल में वो गाना थोड़ा सा लग गया था गाने के लिए।
1: मेरा स्कूल फ्रेंड था तो वो उसने लाइक एक पेज बनाया था तो मैंने उसको देखा। तो मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था जो बहुत अच्छा सिंगर भी है, राइटर भी है, ही इज़ वेरी गुड। तो मेरे को लगा कि यार इसको भी करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू जा वहाँ पे, तू कर, तो हम उसके साथ चले, क्योंकि मैं जानती थी उसको, वो नहीं जानता था। तो हम गए वहाँ पर, उसने किया। तो जो मेरा स्कूल फ्रेंड था जिसका वो पेज था, उसने बोला कि यहाँ इस पर कोई लड़की भी करती है ना आप में से, तो इन्होंने बोला कि ये कर लेती थोड़ा बहुत। तो पहले तो मैं नर्वस थी ऑब्वियसली, लेकिन फिर मैंने गा दिया। तो आई डोंट नो हाउ, पर वो रील काफ़ी वायरल हुई। वो एक मैंने बनाया था एक पंजाबी और थोड़ा इंग्लिश को मिक्स करके। You're the one I'll let it never be.

0: जब रील वायरल हुआ तो है ना, तो मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया था, तो क्योंकि मेरे को तो ऐसे था कि भाई कुछ भी हो सकता है, लोगों को पता नहीं क्या पसंद आता है क्या नहीं आता है, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने तो अपना फ़ोन देखा भी नहीं था, ऐसे डाल दिए थे नॉर्मल। तो मैंने जब सुबह उठ के देखा तो बैक मेरे को कॉल कर रहे हैं, भाई देख तेरी रील वायरल हुई। मैं क्या अच्छा, तो उसके बाद DMs आए है ना, काफ़ी आर्टिस्ट ने लोगों ने अप्रोच किया। बेसिकली मैंने सोचा ही था कि मेरे को तो जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और कुछ तो मेरे से होगा नहीं, टीचिंग ही कर लूंगी मैं, यही सोचा था।
1: की पता नहीं तेरे च देखिया
0: रैपिंग और सिंगिंग की शुरुआत बस दोस्तों को देख के साथ में करते थे, तो सोचा मेरे को भी ट्राई करना चाहिए।
1: और जितना तेरे च सजना कोई है मैं तानी फील ले गया मारी सहन तू ऐसी अपना।
0: जो कॉलेजेस में होते हैं यूथ फेस्टिवल्स, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। उस वहीं से मेनली जब यूथ फेस्टिवल हुआ वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया तो अच्छा गया, मैं जीत गई थी। तो हाँ, तो उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, लाइक मेरे टीचर्स ने भी बोला कि यू शुड ट्राई है ना, तुम अच्छा गाती हो। तो उसके पहले मैं लिखती नहीं थी, मैं गाती ही थी। वे जा तेरे वस दी ना गल, मेरे रूट छड़ दे ते किसे होर दारा मल, सिद्धी तीर वर्गियां पुठी जरा ना मैं गल, हाथ अज भी ना आवा नहीं होना तेरे कल।

0: मुंडे हुड विच ये है मेरे दोस्त, इसका नाम है साहब, इसका नाम है शन्नू। तो कैमरा ऊपर है, ऊपर देखो। दोनों ही बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो इसी वजह से मैं इनको मिली। तो इसी वजह से साथ में है, कह सकते हैं। ये स्कूल में था और ये कॉलेज में था। अपने मेरा डायरी गाना तो सुना होगा, है ना? तो ये इन्होंने लिखा था।
1: लिखने की वजह बस डायरी थी हाथ में
2: और सैड के हाल चल रहे
0: थे। सैड के
2: सोचा कि कुछ लड़की के पर्सपेक्टिव से लिखा जाए, उसकी फीलिंग्स देखी जाए।
1: जैमिंग करते करते वो गुनगुनाया गाना, वो टीम को अच्छा लगा और तब वो देखा कि चलो इसको दे देते हैं,
0: इसको दे देते हैं।
1: हमने कर लिया,
0: इसने कर लिया, एक ही बात है।
1: डायरी दे वर क्या उठे हंजुआ नाले लिख दिया वे, तू क्या सी हंस दी रखे, हंसना ही सिख दिया वे, पर मेरे हौसे तुर गए तेरे ही नाल वे।
0: फरिश्ते आवाज

0: आज हम लंच में खाएंगे आलू के पराठे।
1: चलो चलेंगे।
2: आज खाने में है अचार, चटनी और पराठे और दही। लासी छाछ नहीं है ब्रो ये।
3: साइफर हम करते थे ना, तो ये सिर्फ यही लड़की थी जो साइफर पे गाती थी। इसके बाद काफी लड़कियों ने बोला कि हम भी गाएंगे या हम भी करेंगे। कई कईयों के तो साथ घर वाले भी साथ देने लगे।
0: देखो तो काफी अच्छा लगता है कि मैं इंडिया को एज अ फीमेल रैपर इंटरनेशनल लेवल की स्टेज पे प्रेजेंट कर पा रही हूँ या फिर कर पा सकूँगी आगे, तो हाँ अच्छा लगता है। हाँ बाकी सब वाहेगुरु पे।

0: तुम लोग मुझे सिद्धू मूसेवाला जैसे रिलेट करते हो तो आई फील वेरी, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो पर्सनली, क्योंकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं यार. उनके साथ लेके आपको जोड़ रहे हैं लोग, ऐसे बोल रहे हैं तो बहुत, एक तो पहले तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है मेरे को उनके साथ जोड़ना. इज लाइक प्राउड फील, लाइक नाउ प्राउड नहीं, बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों. प्रेशर भी लगता है और कॉम्प्लीमेंट भी लगता है. प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ही थे, उनके जैसा कोई है नहीं अभी तक, ना ही कोई होगा. या तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, कॉम्प्लीमेंट भी लगता है बहुत.
1: दिल बस तेनू पाले रातां जो जाग के कटियां आयोंदी.
0: मैं तो डेली 10-15 बार इंस्पायर होती हूँ. यहाँ से कोई निकल गया चलते मैं तो उससे इंस्पायर हो जाऊंगी. सबसे ज्यादा इनके पास हंसती हूँ, पता नहीं क्यों.

0: कई बार हम मतलब
1: जब इस इंडस्ट्री में घुसते हैं तो आपको एक गाने को जो देखने का नजरिया होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। पहले हम देखते थे गाना बस वाइब करने के लिए, ठीक है ठीक। अब देखते हैं भाई ये आए तो वो बहुत लाइक बहुत ध्यान देने लग गए उन चीजों पे।
0: असि तेन पहला ही क्या कि तू भी गा।
1: हाँ।
0: ये बोल रही थी मैं नहीं गाऊंगी, छोड़ो मैं नहीं गाऊंगी।
1: मैं क्या करूंगी,
0: इसको धक्के से गवाया था,
1: धक्के से जबरदस्ती, थोड़ी सी जबरदस्ती की, तो फिर मैंने गाया।

0: उसके अगली बार फिर जब साइफर हुआ तो हम कल पिक देख रहे थे वो केक वाली।
1: हाँ कल देख रहे थे हमारे पास।
0: एक साल हो गया उसको, कल एक साल हो गया उसको।
1: मैं दिखाऊं आपको, मेरे पास है
0: सुखे ने वो पे जी स्नैप।
1: ये हमारा फिर जब 1 मिलियन हुआ था रील पे तो केक काटा था।
2: इसकी खुशी ज्यादा हुई
1: तो बहुत थी।
0: इसकी खुशी ज्यादा थी क्योंकि वो सभी ने पैसे जोड़ जोड़ के केक लेके आए थे।
1: हाँ, हाँ। सब ने लाइक इन्वेस्ट किया था वो छोटे से केक। चलो चलो कॉलेज चलिए।
0: चलो चलो।

परम बनना इतना आसान भी नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था, बस थोड़ा सा समझने की लाइक वो होती है और डिसीजन लेने की आप में थोड़ा गट्स और लाइक आपको डिसीजंस लेना पड़ता है। मेरे को भी पड़ा था लाइक बहुत से, जब आप इस उम्र में होते हो यू नो किसी भी लाइक फील्ड में जाने के लिए या फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत से ऑप्शन होते हैं, पर आपको सही चूज़ करना बहुत, कई बार लाइक बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लाइक चूज़ ही नहीं कर पाते हैं। सपोज़ अगर मैं अब गाती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई करती रहती, कभी बोलती नहीं कॉलेज में, मुझे वो लोग ही नहीं मिलते जो मुझे मोटिवेट करते, तो लाइक दिस इज़ हाउ लाइक थिंग्स, मुझे तो मेरे लिए तो यही प्राउड मोमेंट होता है जब भी मैं बोलती हूँ कि मेरे को घर से बाहर जाना है, तब तो मेरे को कोई कुछ पूछता नहीं है वापस से कि भाई कितने दिन जाना है, नहीं जाना है, तो मैं इनके साथ वही, तभी वही अच्छा लगता है कि भाई हाँ अब फ्रीडम है। अब पहले थी रिस्ट्रिक्शन कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो हाँ वो अभी थोड़ा फ्रीडम है, खुद चूज़ करने का फ्रीडम है, और यू कैन चूज़ एनी थिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू, है ना। पहले घर वाले थे कि नहीं आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है।

मेरे को तब लगा कि मुझे लोग एक्चुअल में सुन रहे हैं, जब मैंने एक ही दिन में मेरे को किसी बच्चे ने भी बोला दीदी आपका गाना बहुत अच्छा लगा, उसी दिन मेरे को एक ओल्ड लेडी ने भी बोला कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हमसे छोटे हमें सुन रहे हैं, हमसे इतने बड़े भी सुन रहे हैं, सिटीजन्स लाइक सीनियर सिटीजन्स भी सुनते हैं, तो तब लगा मेरे को भी हाँ मेरे को थोड़े लोग सुन रहे हैं।

0: ये है राजवीर मेरी सहेली, मुंह देख लो इसका।
1: मेरे नमस्ते भी नहीं नहीं
0: नहीं। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम गुरदत्त है। देखदा है सच्चे पातशाह।

0: सो अब हम पहुंच गए हैं वहां जहां हम यूजुअली हमारी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक यहां पे हमारा थिएटर का थिएटर की चीज हो चीजें होती हैं।
1: तू कहना मेनू क्लासिकल नहीं तो
0: तू तो ये हमारा स्टेज है, यहां पे हम बैठते हैं, विश्वीय क्लासिकल गाते हैं, लोग कभी बार नाचते भी हैं। ये हमारे सारी साथी हैं।
2: सही कहा है।